महाराज जी श्री गोविंदवाल साहब दी धरती उपर वस रहे ने ते जो सच्चे सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जिया ने मुक्ति सरोवर बौली साहब की सेवा करवाई सी उसका महात्म दसदे ने कि किस प्रकार उथे 84 पौड़िया दे उपर एक एक पाठ जप जी साहब का पढ़ना है, इशनान करना है, वड्डा महात्म है। जो शरदा भावना दे नल करदे ने उन्हां दा लोक परलोक सवर जांदा है। और जो धन गुरु अमरदास महाराज जिया ने फिर अगे भी मुक्ति सरोवरां दी सेवा करवाउण दी बावत बचन कीते सन, अमृतसर साहिब दी सेवा चल रही है, तमाम संगतां उथे भी सेवा करदियां हन ते सच्चे सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी सचखंड प्याना कर गए ने। उस तो बाद साहिब श्री गुरु रामदास महाराज गुरता गद्दी ते सुभाए मान हन, चारे दिशावां तो पातशाह दे दर्शना लई संगतां चल के आउंदियां, समरथा अनुसार दर्शनी भेटा लै के आउंदियां ने। आओ किस प्रकार दमदमी टकसाल दे पंजवें मुखी ग्यानी संत सिंह जीआं दे विद्यार्थी कवि संतोख सिंह जी गुरु नानक दे घर दा पवित्र इतिहास मोतियां दे वांग परो रहे ने। शरदा

0: है आप जी कर ऐसी मर्यादा कर लव।
1: निवे जगत कर कै बड़ प्रीत।
0: आप जी लाहौर दे अंदर चलो ना अपने घर विच चरणा नू

जिंदगानी, तुर परिवार न लई जिंदगानी, मार्ग अंत अखीरी दे बैठे दो शमशीरा पाके मालक मीरी पीरी दे बैठे दो शमशीरा।

0: करे सरकार हुण जो भी करना इक तन असा ने मूरे खड़ना करे सरकार हुण जो भी करना इक तन असा ने मूरे खड़ना
1: दूनी चौनी सजा सिखा तो दवावांगे दूनी चौनी सजा सिखा तो दवावांगे चंदू चंदेरे नु सबक सिख

0: माला बड़ी पेरी हुण देख चुकनी बदले तो बिना गल नहीं मुकनी माला बड़ी पेरी हुण देख चुकनी बदले तो बिना गल नहीं जे मुकनी
1: जुत्तियां दा हार चंदू गल पावांगे जुत्तियां दा हार चंदू गल पावांगे
0: चंदू चंदरे नू सबक सिखावांगे चंदू चंद

7000 फौज लै के मुखलिस खान हमलावर होया 24 जेठ 1629 ईस्वी पुतली घर दे लागे गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह को लैके थापड़ा करके अरदास बाबा बिधी चंद भाई भाना भाई तलोका बहुत सारे गुरु के प्यारे लाल इन्हां पुतली घर दे जाके अगा सामने रोकिया वैरी दा तेगा ते तेगा खड़कियां ए जंग 2 दिन होई है। मैं इहदा रिजल्ट कढ़ना चाहुंदा हां। अगले दिन वेख के सिखां दी तेग दे जोर ते मुखलिस खान घबरा गया। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज भी सारा साम के बाबी बीबी वीरो दे व्याह दा प्रबंध करके मेरे पातशाह भी आप लोहगढ़ दे किले च दाखिल हो गए। रात दे वेले मुखलिस खान घबराए होए ने एक चिट्ठी एक पत्रका भेजी ऐ गुरु हरगोबिंद फकीरां नूं बादशाहां दे नाल जंग सोचदी नहीं। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज कहण लगे सारा दिन अगों जदों इट दा जवाब पत्थर नाल मिलिया तैनूं हुण पता लगा फकीरां नूं जंग नहीं सोभदी पर तू चढ़ के आया लाहौर तो भेजा होया सरकार दा तेनू तू भाजी चाड़न वास्ते आया न्यूंदरा तेनू तेग दी धार दे उत्ते तोल के दिता जाएगा। इस करके कोई भी किसी गल दी गलती दी जगह नहीं। अगला दिन होया गुरु प्यारे खालसा जीओ 25 जेठ 26 जेठ नू बीबी वीरो दा आनंद कारज है वह झबाल की धरती ते होना है। तको जरा अगला दिन है एक पासे गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज बाबा बिधी चंद भाई पैना इधरों उन्होंने जो तोपां चलाईयां शमश बेग ते मारिया गया कल दे जंग विच जंग बेग ते करीम बेग ने जदों एक पासे किले की बाही जर्जरी कर दिती उस वेले भाई पेंदे खान बाबा बिधी चंद बाहर मैदाने जंग च निकले जदों जालमां दे आहू लाए मुखलिस खान की एक आवाज आई हवा दे बुलियां नाल टकराउंदी होई गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज के कन्नां नाल टकराई। कहण लगा जे गुरु एडा महान है एडा वड्डा जरनैल मेरे नाल आके दो हथ करे बगाने पुत्र मरवाउण दा फायदा कीए। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने कीता इशारा दवल्यों जंग नूं रोक दिता गया। इधरों वधिया मुखलिस खान गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने लै के निशाना छाती दा चलाया तीर मुखलिस खान ने वागा खिच के घोड़े नूं ताह कर दिता। घोड़े दे सामने दिल च तीर वज्जा घोड़ा दाड़ करदा धरती ते जा गया। मेरे पातशाह कहण लगे मुखलिस खान मैं तेनूं आखिया है कि जेड़ा तू भाजी लै के आया इहदा निंदरा जेड़ा ਉਹ ਤੇਗ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਘੋੜਾ ਮੰਗਵਾ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ। ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਉਧਰੋਂ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਵਧਿਆ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਆਖ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕਦਮ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਨੇ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਢਾਲ ਤੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੇ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ।

सतगुरु दी बाणी दा फरमान सफल सफल सफल भई यात्रा आवण जाण रहे मिले सादा। हुण आवणे जावणे मुक गए क्योंकि बार बार दा जन्म होंदा है वाशना करके, तो वाशना ही खत्म। हुण ते प्रार्थना दा जगत, हुण ते ईश्वरी जगत, हुण निरंकार दी दुनिया, हुण ते परमात्मा दी दुनिया। जप आरंभ कीता सी तो जीवन शक्ति मूलाधार तो थले सी, वाशना दा जगत सी। अगर ऐसा बंदा जप भी करदा सी, प्रार्थना भी करदा सी, तो वाशना वस होके करदा सी। धन मिले, रूप मिले, रंग मिले, पदार्थ मिले, उदी बंदगी दे च भी वाशना सी, उदे जप तप दे च भी वाशना सी। लेकिन सहजे सहजे जप तप ने मूलाधार तो उपर कीता, वाशना दा जगत खत्म होया, और सहजे सहजे साधक साधना करदिया करदिया आग्या चक्र तक पहुंचया, और इसनों विन के अगे लंघया, निरंकार दी दुनिया आरंभ हुई, नवे दरवाजे खुले, कोई नवी सोझ मिली, कोई नवी दुनिया की झलक मिली। और जद कोई पुरुष इस दुनिया दी पहुंचे है, ते जद उसनू आख्या गया है हुण इस दुनिया दा कोई नक्शा रखो सामने, ता अक्सर इस तरह दे भगतां ने कह दिता है, कहत कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। हुण असी कुछ नहीं कह सकते, मूलाधार तो अगे लंघे सन, कुछ बयान कर दे रहे। सब दिष्टान मणिपुर तो अगे लंघे सन, भगत बोल दे रहे। अनाहद नाथ ते विशुद्ध तो अगे लंघे सन, भगत कुछ कह दे रहे। खामोशी दी दुनिया आरंभ हो गई, समाधि दी दुनिया शुरू हो गई। इत्थे आके गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज वर्णन करते ने, बिसम बिसम बिसमे ही भई है लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कार आए। गुंगा मुस्कुराते पैंदा है, उदा मुस्कुरावना दसदा है, परम रस आया इसनों बयान नहीं कर सकता, व्याख्या नहीं कर सकता। इत्थे भगत खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, पर उसकी चुप्पी भी जो बोल जाती है, उसकी खामोशी भी जितना उपदेश कर जाती है, आम बंदियां दा बोलना भी उतना नहीं समझा सकता। आम बंदियां दे बोल भी इतने कम नहीं करते। इस तरह के पुरुष से अबोल अवस्था भी बड़ी कम कर जाती है, खामोशी भी जो है बड़ी कम कर जाती है। तो आगे चक्र नूं विन के जिहड़ी अगे की दुनिया है, इहदे बारे साहिब गुरु नानक देव जी महाराज भी फरमान करते हैं, जे हों जाणा, जे मैं उस दुनिया नूं जान लिया, समझ लिया, जे हों जाणा आखा नाहीं कहना कथन न जाई, वो मेरी कथनी तो परे, वो मेरे कहने तो परे, वो ऐसी दुनिया जो मेरे शब्दां च नहीं आउंदी, मेरे बोलण दे च नहीं आउंदी, वो अबोल, वो खामोशी दी दुनिया, वो समाधि दी दुनिया, वो निर्विचार दी दुनिया, वो परम आनंद दी दुनिया, वो सचखंड दी दुनिया, यही बंदे दी मंजिल है। इत्थे पहुंच के ही बंदा पूरा होंदा है, मर के कोई पूरा नहीं आउंदा। ये गल वखरी, एक पंजाबी दी कहावत है, जद कोई बंदा मर जाए तो कहिंदे ने पूरा हो गया, पूरा हो गया। पूरा किस तरह होया? मर के ते कोई पूरा नहीं आता, हाँ पूरन दे जुड़ के ही कोई पूरा हो सकता है। ते पूरन केवल परमात्मा है, आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर, उस पूरन दे लीन होके ही मनुख पूरा होता है। और पूरा केवल परमात्मा है, पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जांका नाव नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। इस अवस्था दे पहुंचे हुए मनुख नूं असीं कह सकदे हां पूरा हो गया है, मुकम्मल हो गया है। ए इंसान जमया अधूरा सी, जीविया अधूरा सी, भजन ने सिमरन ने साधना ने इसनों पूर्ण कर दिता है, मुकम्मल कर दिता है। इतने ते विज्ञानक भी गल मनदे ने कि मनुखी बच्चा अधूरा जमदा है, मुंह विच दंद नहीं ने, पैरां दे चलण दी शक्ति नहीं है, हाथां विच पकड़ दी कोई ताकत नहीं है, जबान विच बोलन तक दी भी शक्ति नहीं है, बुद्धि विच सोचण तक दी भी शक्ति नहीं है, बिल्कुल अधूरा जमे है। सहजे सहजे कादर करीम परिपूर्ण परमात्मा दी साजी ये प्रकृति उहदे शरीर नूं पूरा कर दी है, और मुकम्मल हो जाता है। 14-15 साल तक पैरां दे चलन दी शक्ति आ गई, हत्थां दे पकड़न दी शक्ति आ गई, जबान दे बोलन दी शक्ति आ गई, पूर्ण तौर ते बुद्धि पूर्ण तौर ते सोचण भी लग पई, और दंद मिल गए, वस्तु नूं चबाउण दा भी पूरा बल मिल गया। लेकिन चेतना ते बंदे दी उस दिन पूर्ण होंदी है, शक्ति ते बंदे दी उस दिन पूर्ण होंदी है जद पूर्ण नाल जुड़दी है, ते पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ईश्वर है। कई दफा

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इन्हां सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वाह लगी, ना जमा दी तत्ती वाह लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: पार ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग हो तरंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहो
0: साथ संग अग्न सागर तरहो
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरु पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग परे परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चित हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के वचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: सुनत कमाप्त हो उदार
0: आप त्रैलोकै निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजै
0: सुन सुन अमृत करे प्रभु गाजै
1: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिनकै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभु आप मिलाए
1: मिट गए बैर भई सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भई गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेवा
1: काल जंजाल विकार से रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्रभु की उस्तत करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सहोत निधान
1: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रित नव नित
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: ए फल तिस जन कै मुख भनि
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: एहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोबिंद भगत कै मन विश्राम
1: ओट अपराध साथ संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जा कै मस्तक कर्म प्रभु आए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जिस जन आवे हर प्रभु चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवार
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सबते ऊच ता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी
1: सबते ऊच ता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
2: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
3: ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੈ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਹੈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਹੈ ਪਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚਾ ਹੈ ਤਾਇਆ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭੈਣ ਹੈ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮੇ ਨੇ ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇਮੈਨ ਹੈ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਧ ਨਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਨੇ ਇਤਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਜੈਨ ਮੰਦਰ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਬੌਧ ਮੱਠ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਸਨਾਤਨ ਮੰਦਰ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਚਰਚ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਸਿਨਾਗੋਗ ਨੇ ਇੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ

सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजाय के सर्वत्र राजाय के सर्वत्र सोखा के सर्वत्र पोखा के सर्वत्र त्राणाय के सर्वत्र प्राणाय के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय

पराजय सदा सर्व साजय समस्त सलामय सदैव काम है निर्भय स्वरूप गाद अनुपय अंगाद रूपे अनाद स्वरूप अनंगी अनामय त्रिभंगी त्रिकामय।

तैसा मल जनम जनम दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सरसाहांद साहो जिस पास बहठियां सोही है।

0: उपदेश दे रहे हैं। हे भाई, वो जड़ा हर जीव हरी परमात्मा है, वो अपने भगतां दी भगती करन वालियां दी नाम जपन वालियां दी जड़ी पैज इज्जत है वो सदा ही रखदा है।
1: तोर तू रखदा आया
0: तोर केंदे मोड कदीम तो भाव जदों तो ही यह सृष्टि की पैदाइश हुई है तौर उदों तो ही जड़ा वाहिगुरु परमेश्वर का नाम जपदा है।

0: इस पंक्ति विच अरजोई है, बेनती है, सारा शब्द बेनती है, अरदास है, कीती हुई साधना, कीता होया जप तप, वही सफल है जो मनुख नू अरदास तक ले जाए, बेनती तक ले जाए। कुछ धर्म ते ऐसे ने जैसे ईसाई भी चर्च क्यों जा रहे हो, प्रेयर करने जा रहे हैं, अरदास करने जा रहे, सिर्फ अरदास करने जा रहे हैं। साढ़े च ऐसा नहीं, कीर्तन सुनने जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, गुरु दे दर्शन करने ले जा रहे हैं, सत्संगियां दे दर्शन करने जा रहे हैं, सेवा करने ले जा रहे हैं, पुन करने ले जा रहे हैं। ये सब कुछ कीता होया पुन, सुने होया कीर्तन, सुनी हुई कथा, इसका फल की है अंदरों अरदास दा निकलना। वो अरदास फिर व्यर्थ नहीं जाती, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। ये कदों निकलती है, जप कर करके निकलती है, कीर्तन सुन सुन के निकलती है, कथा सुन सुन के निकलती है, पाठ कर करके निकलती है, उंज नहीं निकलेगी। उंज बथेरी अरदासा होंदियां ते मनुख कर कोई रस्मी अरदास, दीवान दी अरदास, दिल दी गहराई चो अरदास निकलती है, जप कर करके, तप कर करके, साधना कर करके, कीर्तन सुन सुन के, कथा सुन सुन के, बाणी पढ़ पढ़ के, पाठ कर करके, उंज अरदास नहीं निकलती दिल दी गहराई च। और जदों ये अरदास निकलती है फिर व्यर्थ भी नहीं जाती, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल दी गहराई चो जिहड़ी अरदास निकली है खुदा तक पहुंचेगी। इसे नू गुरबाणी कहती है, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। सारे शब्द विच एक अरदास है, यक अर्ज असी अरदास कहने हैं, परशियन दे कहने ने अरजोई करने, अर्ज करने, अर्ज करने, अरजोई है। संस्कृत दे हिंदी च कहने ने प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। फारसी च कहने ने अर्ज करनी है, अरजोई करनी है। गुरु नानक ने एक शब्द नो जन्म देता है, अरदास करनी है। ते अरदास दे जो मैं अर्थ समझे ने ते पढ़े ने, अर्जे दास्त हाथ जोड़ के अरजोई करने, दस्त बस्ता हथानू जोड़ के अरजोई करने, बेनती करने, प्रार्थना करने। सतगुरु कहंदे ने यक अर्ज, एक मेरी अरजोई, एक मेरी प्रार्थना, एक मेरी अरदास। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, गोश कन्ना नु कहंदे ने, ऐ करतार जे तू कन ला के सुने। मनुख जिथे आउंदा है उत्थे ही उसके कन आउंदे ने। घर विच बैठीए मां ते सानू कुछ सुनाना चाहे नहीं सुन सकते, क्योंकि असी जिथे बैठे हैं कन उत्थे ही ने। जिथों सानू सुनाया जा रहा उत्थे साडे कन कोई नहीं। मनुख जिथे आउंदा है उसदियां इंद्रियां उत्थे ही आउंदियां, उसदी जबान उत्थे ही आउंदी है, उसदियां अखां उत्थे ही आउंदियां। जिथे है उत्थे ते वेख सकदा है, जिथे नहीं है नहीं वेख सकदा, जिथे है सुन सकदा है, जिथे नहीं है नहीं सुन सकदा। मनुख जिथे है उहदे ज्ञान ते जद व्यापक है ते उहदा सुनना भी व्यापक है, किसे थां भी अरजोई कीती जा सकती है, किसे थां। परमात्मा व्यापक है, उदा वेखना भी व्यापक है। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे, हे प्रभु तू कन कर भाव सुना। हे करतार, हे सृष्टि दे रचनहारे, एक अरजोई एक बेनती है। फिर अगलिया पंक्तियां च जिस दे अगों बेनती कर रहे ने उसकी महिमा बयान कर देना। हां जी,
1: हक्का कबीर करीम तू ऐब फरद गवार।
0: परशियन देच अरबी देच सच नू हक कहंदे ने, हक। जैसे भाई साहब भाई नंदलाल कहंदे ने, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। ऐ कलगीधर तुसी ते हक हो, भाव सच हो, हकीकत सच्चाई, हक सच परशिन देच अरबी देच सच लई जेड़ा शब्द है वो है हक। सतगुरु कहिंदे ने हक्का ऐ सच्चे, हक्का ऐ सच्चे, हक्का कबीर। कबीर कहिंदे ने बुजुर्ग नू, वड्डे नू, पुराने नू, पुराणी चीज नू कबीर कह देंदे ने। बुजुर्ग बुढ़े मनुख नू भी कबीर कह देंदे ने, संत फकीर नू भी कबीर कह देंदे ने, और परमात्मा नू भी कबीर कहिंदे ने। वड्डा बुजुर्ग है, कदीमी है। एक कबीर लफ्ज फारसी का भी है और अरबी का भी है। अरबी च भी कबीर कहिंदे ने, परशियन च भी कबीर कहिंदे ने वड्डे नू। हे हक्का, हे सच दे स्वरूप, हे सच्चे, हे सब तो वड्डे, हक्का कबीर करीम तो बख्शिंदे तो, तेरे स्वभाव विच दया ही दया है, तेरे स्वभाव विच रहमत ही रहमत है, बख्शिश ही बख्शिश है। हक्का कबीर करीम तो बेऐद परवरदिगार, ऐ पालन हारे तू निर्विकार है, तेरे च कोई ऐब नहीं, तू निर्विकार है, निर्मल है, अति निर्मल है, अति निर्मल है, निर्विकार है, और सृष्टि का करणहार है, तू हक है, तू कबीर है। इस तरह मेरे पातशाह उस प्रभु की अरदास विच जो है महिमा गायन कर रहे हैं। हाँ जी,
1: दुनिया मुकमे पानी तहकीक दिल तमी,
0: हे प्रभु मैं ते अपने दिल नो समझाना, ये जगत फानी है, नासवंत है, तू हक्का है, जगत ते झूठ है, छाया है, तू कबीर है, ये सब कुछ ते तुच्छ है, बेमैनी है। दुनिया मुकामे फानी, ये जो टिके होया जगत दिसदा पे है ते मिट जाएगा, ये ते फानी है, नासवंत है। ऐ मेरे दिल तू ऐसा जान, हे प्रभु, हे करीम, हे हक्का, मैं अपने दिल नो ऐसा समझा रहा, ऐसा कह रहा, सब कुछ नासमंत है। किसी वक्त खुलासा करांगा, धर्म दा प्रभु दा सारा ज्ञान मौत दे ज्ञान तो आरंभ होंदा है। लोभ वासना अहंकार सारा जीवन दी लालसा तो शुरू होंदा है। जितनी जीवन दी लालसा उतना अहंकारी, जितनी जीवन दी लालसा उतना लोभी, जितनी जीवन दी लालसा उतना वासना दे ग्रसिया होया, जितना मौत दा ज्ञान उतना बैरागी, जितना मौत दा ज्ञान उतना सतवादी, जितना मौत दा ज्ञान उतना आत्मदर्शी। धर्म दा ज्ञान शुरू होंदा है मौत दे ज्ञान तो। तो सतगुरु कहिंदे ने मैं दिल नूं समझा रहा, सब नासवंत है, सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐ मेरे दिल ये सच करके जान, ये मैं चंगी तरह तहकीकात करके वेख लिया है, छान बीन करके देख लिया है, सब कुछ नासवंत है, सब कुछ नासवंत है। ऐ मेरे दिल सच्चा जान, केवल उसनों वड्डा जान, केवल उस परिपूर्ण परमात्मा। हाँ जी,

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

बन जैसा ही सदन नो समझ, घरों ही उजाड़ समझ ले की है तेरे घर दे। सिर्फ घर नो ही उजाड़ ना, बन से सदन सवै कर समझो, घर दे च जो कुछ भी है सब कुछ उजाड़ समझ ले। बड़े कठोर जिया बचन लगन गए, पर मैं अर्ज करा सिर्फ एक मनुख नू 15 दिन लई अपने घर दे च हाउस अरेस्ट कर लिया जाए भी तू नहीं जा सकता बाहर किधरे, यकीन जानो घर उजाड़ बन जाएगा, घर दिया दीवारां खाण नू पैणगियां। बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माए उदासा। गुरु अर्जन देव जी ते कहिंदे ने घर दी गल छड़ सारा शहर ही उजाड़ है। महाभयान उद्यान नगर कर मानिया, कहिंदे बहुत वड्डा शहर, महाराज कहिंदे ने बहुत वड्डी उजाड़, मनुख ते मनुख नालों टुटिया है, किसे दा किसे नाल कोई मेल नहीं, किसे दा किसे नाल कोई संबंध नहीं, किसे दा किसे नाल कोई जोड़ नहीं। इस नूं तूं वड्डा शहर पिया कहिंदा, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने बहुत वड्डी उजाड़। जैसे किसी नूं इस गल की समझ आ जाती है सब कुछ तो निराश होंदा है। हुण मैं अर्ज करा तीन साधन विद्वान मनदे ने, तीन कारण टोटली निराश होण दे, उदास होण दे। प्रथम, बहुत गहरा सत्संगी होवे, गहरा सरोता होवे, बहुत गहराई नाल सुनन वाला होवे। जो गहरा सुनदा नहीं उहदी समझ उच्ची भी नहीं हो सकदी। जिस दरखत ने अपनियां शाखां नूं आसमान तक लै जाणा है उहनूं अपनियां जड़ां पाताल दे च लै जाणियां। जो दरख्त गहरा नहीं जा सकदा यकीन जानो दरख्त उपर भी नहीं उड़ सकता। जो गहरा सरोता नहीं उहदी समझ भी उच्ची नहीं होवेगी, कतई नहीं उच्ची। बोल उच्चे किसदे होणगे, समझ उच्ची किसदी होवेगी जिहदी स्रोत बड़ी गहरी होवेगी, बहुत गहराई नाल सुणदा होवेगा। अगर गहराई नाल सुणदा है तो फिर गुरु दा शब्द चोट कर जाएगा। एक दिन दा कीता होया जपजी साहब दा जप इनू उदास कर देगा, निराश कर देगा। एक दिन दी जपी हुई सुखमनी इनू निराश कर देगी, उदास कर देगी। क्यों? शब्द तीर दी तरह लगेगा। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु वचन मन, तीर लगैया मन की बिरथा, मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया। कल इस पीर दा मैं जिक्र कीता सी। भगत कबीर जिस ढंग नाल इस नूं बयान करदे ने ए भी सुन लो। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। सतगुर दी बाणी दा बाण ऐसा लग्या, तीर ऐसा लग्या, शब्द मन नू छोएगा, मन नू चोट करेगा। जितने चिर तक शब्द ने मन नू चोट नहीं की थी समझ लो इसने सुनया ही नहीं है। मन स्रोता बने, जबान वक्ता बने। जबान आखे वाहेगुरु वाहेगुरु, ये वक्ता बने, मन स्रोता बने। पर होंदा कि ये जबान भी वक्ता बनती है, मन भी वक्ता बनता है। मन हर वक्त बोलता है, नहीं चुप करता, ये सुनदा ही नहीं, मन दी सुनन दी आदत ही नहीं। कि जद सुनदा ही नहीं तो शब्द मन का हिस्सा ही नहीं बनता। उखड़े उखड़े लोग अक्सर सत्संग दे च बैठे होंदे ने, उखड़ उखड़ के लोग पाठ करते हैं, सुनना कठिन है। अगर कोई सुन लवे, महाराज कहिंदे ने, दोहरा दें, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। कबीर कहिंदे ने गुरु दा शब्द मैं की सुनिया, गूंगा हो गया, मैं मिथ्या नहीं बोलदा, कौड़ा नहीं बोलदा, फिका नहीं बोलदा, व्यर्थ नहीं बोलदा, जबान तो गूंगा हो गया। जिन्नी पीड़ा हुई है तीर दे लगन नाल मैं इनों भी बयान नहीं कर सकता।

धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, नहीं खाऊंदा होवेगा हिंदू गऊ, पर पराया हक खा रहे तो गऊ भी खा रहे, नहीं खाऊंदा होवेगा मुसलमान सुवर, पर पराया हक खा रहे तो सुवर ही खा रहे। हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, एक देश दूजे देश का हक मार जाता है, बड़े वड़े वड़े देश जो छोटे देशों का हक खो लेंदा है, सारी दुनिया इस तरह चल रहा है, वड़ियां कौमां छोटी कौमां का हक खो लेंदियां ने, वड़े मनुख छोटे मनुखां का हक खो लेंदे ने, सुअर खांदे ने या गऊ खांदे ने और की है, अगर इस हिसाब नाल लोगे तो सुअर खांदे ने गऊ खांदे ने। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरु पीर हामा तां भरे जा मुरदार ना खाए। गुरु पीर हामी भर सकदा अगर मुरदार ना खावे, तो मुरदार की है, हिंदू लई गऊ खाना मुसलमान लई सुअर खाना पराया हक मुरदार है, मुरदा है, ये तो मुरदा खाना है। औखे ना होना बगौर

देवी मुरदार ने अगले नु कुछ भी नहीं पता चलता। इतनी दृष्टि ते है अंधेरे च वेख सकते ने, रोशनी च नहीं वेख सकते। तो जो अंधेरे च वेख सकता है रोशनी च नहीं वेख सकता, गोगू है और कोई की है, गोगू है। संपत दौल झूल संग झोलत माया मगन फिरत घोगना। सतगुर ने उस प्रश्नकर्ता नु चुप करा दिता सी जिसने किया सी महाराज शब्द सारिया दे हिरदिया नु रोशनी नहीं देंदा, सूरज देंदा है। सूरज सारिया लई बार चानना कर देंदा है, गुरु दा शब्द सारिया दे हिरदे च प्रकाश नहीं करदा। फिर ये करोड़ा सूरजां वर्गा किस तरह होया? दो शब्द बर्दाश्त कर लेना, हाथ जोड़ के मैं माफी मंगा। घुग्गू थोड़े ने, बहुत ज्यादा नहीं ने, पंछियां दे च पशुआं दे च ओ थोड़े जे ने जिन्हां नूं रात दी तारीकी दे च ते दिखाई देंदा है, दिन दे चानने च नहीं दिखाई देंदा। मनुखी दुनिया च ये घुग्गू बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। झूठ दे च तेरा सांदा है, सच दे च कोई नहीं। गंदे गीतां दे च तेरा सांदा है, शब्द दे च कोई नहीं। बिखे नाद दे च तेरा सांदा है, रब्बी संगीत दे च कोई नहीं। इन्हां दा तालमेल रात नाल बैठदा है, दिन नाल नहीं है। तो चूंकि रात नाल ताल बैठदा है तो इन्होंने साधन भी उस तरह के बनाए ने, क्लब ने, थिएटर ने, शराबखाने ने, वैशियाले ने, जुए खाने ने, सब रात नूं खुलदे ने। इन्हां दे दरवाजे रात नूं खुलदे ने, इन्हां दी रौनक रात दी है, दिन दी नहीं है। लॉस एंजलिस दे च एक सज्जन मैनूं कहण लगा, उत्थे भी किधरे धन गुरु नानक देव जी महाराज का हुक्मनामा आया सी, ते उस दिन किधरे हुक्मनामे की कथा करनी सी। इतवार का दिन सी, राती होवन कालिया सुपे दासे वन, देहो बग्गा तप्पे घना कालिया काले वन। पहले पातशाह जी का वाक है। सूरज दिन चिट्टा चढ़े है, पर कालिया चीजा ते कालियां ने कोई चिट्टिया नहीं हुई। रात काली बोली है, बड़ी भयंकर मसया दी रात, पर चिटियां चीजां ते चिटियां ने कोई कालियां नहीं हुई। महाराज कहते ने करोड़ा भी दुष्ट मिल जान, संत अपनी सजनता ही नहीं छड़ता, भावे कितनी मसया दी रात हो जाए, कितनी कालक हो जाए, ओदी चिटियाई रहेगी। राती होवन कालियां सुपे दा सेवन, मल्ला पहला सोई मल्ला पहला है, पहले पातशाह जी का वाक। इनू कबीर अपने ढंग नाल इंज बयान करदे ने, संत ना छाड़े संतई जे कोटक मिले असंत, मलयागर भयंगम बेड़े ओ तो शीतलता न तजंत। इन्हां इलाकों ते चंदन नहीं है, चंदन भारत देच मैसूर स्टेट देच बहुत ज्यादा है, कर्नाटक देच थोड़ा जिहा, तमिलनाडु देच भी है पर ज्यादा कर्नाटक देच है, थोड़ा थोड़ा आंध्रा च भी मिलता है, मध्य भारत देच भी मिलता है, पर अच्छी नस्ल का जिहड़ा चंदन है बावन चंदन ओ कर्नाटक देच है, बड़ा कीमती। अक्सर जद चंदन दे लकड़ दी कटाई आउंदी है ते फिर मोर छड़े जांदे ने, क्यों? चंदन नु सप लिपटे होंदे ने, कोबरे फनियर नाक। चंदन बड़ा शीतल है, चंदन बहुत ठंडा है, ते सप दे सिर दे जड़ी जहर आउंदी है अगर वध जाए सीमा तो फिर खोलदी है। अगर उसनु कोई जानदार चीज, जानदार जीव ना मिले, हो सकता है पत्थर नो भी डंग मालेगा जहर कढ़ने लिए, क्योंकि सिर उसका खोलता है, वह दरख्त नो भी डंग मार सकता है। कुछ तो कहते ने उही पत्थर संखिया बन जाता है जिन्हों फनियर नाग डंग मारदा है। भारत देश इस तरह मनते ने, वैद लोग उन्हों संखिया कहते हैं।